इस सोलखुम्बु कानून कैंपस में शैक्षिक सत्र 2083 84 को लगी 3 वर्ष एलएलबी प्रथम वर्ष को भर्ना खुले कुछ विषय में स्नातक तह उत्तीर्ण कर इच्छुक व्यक्ति निम्नअनुसार भर्ना होने जानकारी कराई भर्ना कार्यक्रम को मिति भर्ना का लगी आवेदन फारम वितरण भदौ 1 गते देखि भदौ 30 गते समय प्रवेश परीक्षा असोज 10 गते नतीजा प्रकाशन असोज 11 गते भर्ना मैथ असोज 12 गते देखि असोज 25 गते समय कक्षा संचालन कार्तिक 10 गते देखि रजिस्ट्रेशन फारम भर्ने मैथ कार्तिक 30 गते समय सब जानकारी का 98150056 98148445 98242 84 87 75 गीता घिमिरे कैंपस प्रमुख सोलखुम्बु।

मेरे आंगन पर नील भई होशियारिया पूनम जुखी तारनी भई पारी पारी झड़ी बूटियां।

0: सुनता मेरे कपड़ा पैकिंग कर दूं तो सामजिक मिसेस लाई कैंसर उपचार कराऊं ना इंडिया संगे लिए रजान करने हो
1: ए हो रहा अन्य सुनता अब कैंसर को उपचार सीएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट भरतपुर में नहीं जानी नेपाल में पहले पटक अत्याधुनिक वेरिएंट ट्यूबिंग भाई को 60 काउंस र हाइपर आर्क लगाए का अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग करी मस्तिष्क में बने को ट्यूमर फोक्सो को कैंसर स्तन कैंसर घाटी तथा ताव को संबंधी कैंसर पेट तथा कॉलेजो संबंधी कैंसर पाठे घर को मुख गर्भाशय तथा मूत्राशय संबंधी कैंसर तथा अन्य कैंसर को उपचार हुन्छ कैंसर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएशन को माध्यम बाट पूर्ण रूप में निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ सरकारी अस्पताल की सेवा शुल्क में उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकार बाट प्रदान गरिने कैंसर पीड़ितहरू का लागि 1,00,000 सम्म को छूट को व्यवस्था पनि छ
0: यस्तो सुविधा रहेछ म अब कैंसर उपचार गराउन सीएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट मा नै लिएर जान्छु सीएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट
2: फोन 0754933335 4395555
3: विगत 26 वर्षदेखि कृषि तथा भेटेरिनरी शिक्षा अध्यापन गराउँदै आएको हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी हिकास
4: सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित पहिलो विशुद्ध कृषि तथा भेटेरिनरी कलेज आफ्नै कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी प्रयोगशाला तथा फार्म भएको दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल यस हिकास कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रिकल्चर र बीबीएससी एनएएस भेटेरिनरी डाक्टरमा भर्ना खुल्यो सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी हिकास किर्तिपुर काठमाडौँ फोन 01-590-61-89 मोबाइल 97-72-540-89

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम
0: चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलुदुपु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु

0: Rádio Sono é Sono FM 101.2 MHz उज्ज्वल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Sunset. Surya Film. The studio time.
2: It's 1 p.m. Dusako 8 p.m.
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोनू दुर्गु नगर पालिका 5 सोनू कुम्बु
3: आदरणीय श्रोताबृन्द तपाईँ अहिले सुनिरहनु भएको छ सुन्न एफएम सुन्न एफएममा अब तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ

0: 日清製粉チャンネルを閉じてください。
1: उपभोक्ता अधिकार को संरक्षण गरौं ग्रस्तरी वस्तु तथा सेवा प्राप्त गरी उपभोक्ता को अधिकार को रक्षा गरौं कारोबार में बिल विशुक लिने र दिने गरौं कारोबार पारदर्शी बनाऊ नफा को उद्देश्य झूठा भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना गरौं वस्तु सेवा को मूल्य मात्रा न्यासी नीति गुणस्तर एकीन करे मात्र खरीद बिक्री गरौं वस्तु व सेवा को प्रयोग कुनै हानि नुकसानी भए स्थानीय प्रशासन में उजुरी गरौं वस्तु तथा सेवा को प्रयोग स्थिति पुगे क्षतिपूर्ति मागौ निष्पक्ष तथा तथ्यपूर्वक सूचना पाउने उपभोक्ता अधिकारको रक्षा गरौ भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचनाको कारण उपभोक्ता छोडिएमा स्थानीय प्रशासनमा उजुरी गरौ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: टाइम
0: चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलू दुर्कुंडा नगर पालिक 5 सोलू खुम्बू।

सरकारको रक्षा गरौं। भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचनाको कारण उपभोक्ता ठगिएमा स्थानीय प्रशासनमा उजुरी गरौं। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: प्रोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. City FM. In studio time.
2: It's 6 p.m. Saturday, October 2.
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: 还有喝酒的人说路 FM 不断的
1: 张雀苏利亚森有思路障碍
2: It's 8pm Let's go out with you
3: I'm Jake Kusatma, New Star Digital Color Lab तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु कुंभू
4: Where everyone, stay connected with

0: Station. Sony FM, the studio time.
1: It's 9 PM, Ratko, Novadu.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलुदूत को नगर पालिका पांच सोलुखुम्बु
3: आदरणीय श्रोताबिन तपाई अहिले सुनिराख्नु भएको छ सोनी एफएम सोनी एफएम में अब सुन्न सकिन्छ नेपाली सदाबहार गीतहरू